0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बाहर लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरु में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित GMO उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, SDRF और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। SDRF के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: ऐकूया सुभाषित गुंजनम, लेखन आणि निवेदन अदिती माधवन।

0: मिला था BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का आयोजन करने का। मानो सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये बैडमिंटन का त्योहार था। हर शॉट में रोमांच था। हर रैली में धड़कन थी। हर पॉइंट के साथ जुनून सातवें आसमान पर चढ़ता दिखता। किसी जश्न को यादगार बनाने के लिए सिर्फ मैदान सजाना काफी नहीं होता। कोर्ट पर खिलाड़ी चाहिए हैं, उनके साथ खड़े फिजियो और सपोर्ट स्टाफ चाहिए हैं, पर्दे के पीछे आयोजन की बारीकियों को संभालते लोग चाहिए हैं, दुनिया भर से आए मेहमानों के लिए मेहमान नवाज चाहिए हैं, और सबसे बढ़कर स्टैंड्स में उमड़ते वो दर्शक जिनकी तालियों से खेल में जान पड़ती है। इन सब ने मिलकर इसे सिर्फ एक विश्व चैंपियनशिप नहीं रहने दिया, इसे बैडमिंटन का उत्सव बना दिया। शायद इसलिए तो टूर्नामेंट के खत्म होने पर BWF की प्रेसिडेंट खुनियंग लिस्वाड्रा टूल ने कहा,
1: What a week New Delhi has given us. India waited 17 years for this moment and India made every year count. The BWF World Championships 2026 have won praise from every corner of our sport. That praise belongs to people.
0: Badminton Association of India के सचिव संजय मिश्रा भी भावुक नजर आए।
2: हम ये सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंट था, हमारी टीम को पूरा विश्वास था कि टूर्नामेंट हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इतना सक्सेसफुल होगा, इतने अच्छे से होगा, शायद इसकी हमको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये पिछले 6 महीने की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, साई की और BI की टीम की ये मेहनत था और इसका हमको ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है।
0: आकाशवाणी की टीम को भी इस जश्न का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और रेडियो के जरिए हमने कोशिश की कि इसकी हर धड़कन आप तक पहुंचे, लेकिन उस धड़कन की असली रफ्तार तो कोर्ट पर उतरे खिलाड़ी ही होते हैं। 56 देशों से करीब 400 खिलाड़ी शिरकत करते नजर आए, कई कीर्तिमान स्थापित हुए। भारत का प्रदर्शन भले ही मिला जुला रहा हो, लेकिन कांस्य पदक जीतने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी का प्रदर्शन सालों तक याद रखा जाएगा। आइए अन्य विजेताओं से आपकी मुलाकात कराते हैं। शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बेमिसाल कहानी फ्रांस के खिलाड़ियों की रही। 2026 से पहले इस देश ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कोई मेडल नहीं जीता था, पर इस बार हेडलाइंस फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने ही बटोरी है। मेन सिंगल्स में खिताब जीता एलेक्स लैनियर ने, फ्रांस के वो खिलाड़ी जिनकी भावनाएं अक्सर चेहरे पर नहीं उतरती, लेकिन कोर्ट पर उनका खेल रोकना नामुमकिन था। विक्टर लाई और कोडाई नारोका जैसे नामचीन खिलाड़ियों को इन्होंने धूल चटाई और गले में स्वर्ण पदक पहन लिया।
3: आई थिंक इट्स डेफिनेटली ह्यूज फॉर फ्रेंड्स, डेफिनेटली ह्यूज, फेल्ट ऑल द सपोर्ट अबाउट द फैंस, वी आल्सो गॉट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम ऑल द स्टाफ बिहाइंड, एंड आई थिंक डेफिनेटली टुडे वाज अ डे फॉर फ्रेंच बैडमिंटन एंड इट वाज अ डे for the whole staff also. I mean, I didn't feel that I won for me today. Today it was for friends.
0: Women singles में दक्षिण कोरिया की आन से युंग का खिताब जीतना किसी के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन अचंभा इस बात का है कि टूर्नामेंट के दौरान चोट से जूझती हुई आन से युंग ने एक भी गेम यानी एक भी सेट नहीं हारा। सेमीफाइनल में चीन की वांगजी ही के खिलाफ भले ही 1 घंटे 1 मिनट का संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन वहां पर भी सीधे सेटों में युंग ने जीत हासिल की और एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि क्यों उन्हें ऑल टाइम ग्रेट माना जाता है। वो कहती है,
4: There are a lot of people supporting me. I want to thank all of my fans supporting me. This keeps me going and just giving me energy. So I'm so excited and very enjoy. I think it's support me, yeah, cheering on me. This is my motivation. And there are a lot of people, my team coach, head coach, my family, और पैंस ट्रेनर और सपोर्टिंग मी दिस इज माय कीप गोइंग।
0: मेंस डबल्स में चीन से आने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने मानो पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में मिली हार का बदला लिया। सामने दो साल पहले ओलंपिक चैंपियन बनी एरन चिया और सोवी यिक की मलेशियाई जोड़ी थी, जिनको फाइनल में दो सीधे सेटों में मात देकर चीन की इस जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

0: our men's doubles world champion 2026 from China, Liang Weiqing and Wong Cheng.
1: वुमेन्स डबल्स में एक बार फिर दक्षिण कोरिया चमका। बेक और ली की जोड़ी ने चीन की टान और लियू की वर्ल्ड रैंक नंबर वन जोड़ी को फाइनल में दो सीधे सेटों में मात दी। और इस जीत के बाद भारतीय समर्थकों की हौसला अफजाई को भी अपने इस जोश भरे प्रदर्शन का एक कारण बताया।
2: 31년 만에 금메달을 따게 돼서 너무 기분 좋고 예, 영광인 것 같습니다. 네, 이번 오늘 결승전에서도 그렇고 시합하는 내내 정말 좀 대단한 열기를 보여주셔가지고 정말 감사하게 생각하고 선수로서는 정말 뛸 맛이 났던 것 같습니다.
3: She's saying that we are highly, you know, happy that after 31 years that our country has won a medal. They are very excited about the Delhi crowd that while playing each and every match, they were really excited that the crowd were cheering for them. And as a player, it's a really great honor.
1: मिक्स डबल्स में भी इतिहास रचा गया। टॉम गिक्वेल और डैफनी डेल रू की जोड़ी ने फाइनल में एक बड़ा उलटफेर करते हुए चीन से आने वाली फेंग और हुआंग की जोड़ी को मात दी और बन गए विश्व विजेता।
4: Yeah, we are really, really happy, really proud. It's amazing. Like 10 years ago, no French player can thought about that. So it's amazing. We are really proud.
1: इसी के साथ इस विश्व चैंपियनशिप में फ्रांस ने दो गोल्ड मेडल जीते। उनकी कोच टीना ने बताया कि कैसे जनवरी में हुए इंडिया ओपन का अनुभव उनके सभी खिलाड़ियों के काम आया।
5: I'm very, very happy, of course, and happy that the work that we've been doing is paying off on the right time. We had the World Championship as a number one goal for the year. We worked specifically on playing in this hall because we had already tested it in January. So we worked on how to improve the areas that we needed to be better in.
1: अब गौर करते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। शुरुआत ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी से, जो सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी। विश्व रैंकिंग में 39वें पायदान वाली इस जोड़ी से उम्मीदें ठीक ठाक प्रदर्शन की थी, लेकिन कोर्ट पर जिद, जुनून और जज्बे से भरा खेल दिखाते हुए इस जोड़ी ने वुमेन्स डबल्स में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही एक कीर्तिमान भी स्थापित हुआ। 2011 से हर साल BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कम से कम एक पदक जीतने वाले अब सिर्फ दो देश हैं, बैडमिंटन का पावर हाउस चीन और दूसरा भारत। इस जीत पर और इसी हफ्ते अर्जुन अवार्ड मिलने की घोषणा पर ट्रीसा कहती हैं,
6: Being into that club, I feel like so happy. There is a lot of journey we have in future. I feel like this is just a start. We just needs to take this as a positive and in a confidence way. I feel like this all moments and getting this medal and even that Arjun Award this week when they announced, I feel like that also give us some other boost in this tournament.
1: इसी श्रेणी में अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेल रही काविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी भी थी, जिन्होंने पहले राउंड में दमखम दिखाते हुए अपना मुकाबला सीधे सेटों में जीता था, लेकिन यूं कहें कि ड्रॉ ने उनका साथ नहीं दिया। राउंड ऑफ 32 में सामना हुआ बल्गेरिया की मजबूत गैब्रियला स्टोविया और स्टेफानी स्टोविया की जोड़ी से, जिनके विरुद्ध उनको हार मिली।
7: इट वॉज प्रीटी ग्रेट एंड इंडिया में हो रहा है, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड वी हैड दैट प्रेशर, यू नो, लाइक एवरीबॉडी हैज दैट होप इन अस दैट यू नो यू शुड विन एट लीस्ट फ्यू मैचेस एंड व्हेन वी came on court, we were nervous, but then when we started playing, we came into the momentum, we forgot everything and we were there.
1: Men singles में चर्चा का केंद्र लक्ष्य सेन होने वाले थे, लेकिन पहले ही दिन डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड रैंक नंबर वन शी यू ची को हराने के बाद आयुष शेट्टी भारतीय बैडमिंटन के पोस्टर बॉय बन गए।
8: प्लेइंग वर्ल्ड नंबर वन इज नेवर इजी, इट्स अ फर्स्ट राउंड फॉर मी एज वेल। आई वुड से इवन आई हैव नॉट सेटल्ड इन, बट आई थिंक इट वाज अ टफ वन फॉर बोथ ऑफ अस एंड देयर वर नो बी मोमेंट्स एज आई सेड, बट या हैप्पी टू पुल इट ऑफ।
1: उनके शुरुआती परिणाम मानो किसी सुनहरे सपने जैसे थे, लेकिन फिर राउंड ऑफ 16 में आकर उनका ख्वाब चकनाचूर हुआ जब इंडोनेशिया के आलवी फरहान के खिलाफ उनको हार मिली।
8: Definitely a lot to learn, especially this match, a tough one to digest as well, but we'll go back, analyze and I think a lot of positives as well from this tournament, but I think definitely a lot to learn and a long way to go.
1: दूसरी तरफ लक्ष्य सेन राउंड ऑफ 32 में USA के गैरेट टैन से हारे, जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। वुमेन सिंगल्स में जहां टीनेज सेंसेशन उन्नति हुड्डा का सफर राउंड ऑफ 32 में खत्म हुआ, तो वहीं पीवी सिंधु ने मानो घड़ी की सुइयां पीछे ले जाते हुए अपने पहले दोनों मुकाबलों को एक तरफा अंदाज में जीता, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल

0: में उनके सामने चीन की वांग जी यी की कड़ी चुनौती थी जिसको सिंधु पार ना पा सकी।
1: Sad about it. I should have converted that. That's how it is. That's how sport is. You lose a lot, you win a lot. I mean, when you lose, you need to deal with it and bounce back stronger from your mistakes. I think that's how it will be and it should be. थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से। बहुत अच्छा चल रहा था गेम वन, गेम टू और गेम थ्री भी बहुत इक्वल चल रहा था। लास्ट थ्री पॉइंट्स जस्ट चेंज द गेम इज व्हाट आई फेल्ट। आई शुड हैव बीन लिटिल पेशेंस।
0: मेंस डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा खुरुनन की जोड़ी राउंड ऑफ 32 के आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन चोट के बाद वापसी कर रहे गोल्डन बॉयज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी सराहनीय प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। वहां इवेंचुअल चैंपियंस लियांग और वांग ने उन्हें मात दी।
2: वी प्लेड डिसेंट, आई वुडंट से वी प्लेड बैड, बट जहां पर हमको लगा कि हमें पॉइंट मिलेगा, मिल नहीं पाया क्योंकि दे वर प्लेइंग क्वाइट अ सॉलिड गेम। अ लॉट ऑफ द पॉइंट्स हमें लगा फिनिश हो जाएगा, वो फिनिश हुई और काफी अच्छे से उन लोग उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहे थे। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट आई थिंक दैट इज हाउ स्पोर्ट इज।
0: मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका गाड़े एवं आसित सूर्या और अमृता प्रमुथेश के साथ भारत की तीन जोड़ियां हिस्सा ले रही थी, लेकिन केवल ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो ही राउंड ऑफ 16 तक पहुंच सके, जहां एक बार फिर भारत के आड़े चीन आ गया। कुल मिलाकर कई सकारात्मक संकेत देखने को मिले। और बताते हैं पुलेला गोपीचंद।
3: थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि थोड़े से क्लोज मैचेस हम लोग ने हारे हैं। विमेन सिंगल्स में दोनों मैच हम लोग काफी क्लोज हारे हैं, और मेन सिंगल्स में भी आयुष का पहला दिन बहुत ही अच्छा था, और द थर्ड डे वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंट, बट ओवरऑल डिसेंट इन दैट सेंस। आई वुडंट बी टू वरीड अबाउट इट। सम डेज दीज थिंग्स डू हैपन, बट द नेक्स्ट टाइम अराउंड आई एम होपिंग दैट, और द एशियन गेम्स आई एम होपिंग फॉर बेटर।
0: कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनके लिए ये सफर सिर्फ कोर्ट तक नहीं था, ये अपनी जड़ों तक लौटने का एक खूबसूरत बहाना था। दुनिया के अलग अलग कोनों में पले खिलाड़ी इस बार सिर्फ भारत खेलने नहीं आए थे, शायद अपनी मिट्टी को थोड़ा और करीब से महसूस करने आए थे। जैसे यूएई का प्रतिनिधित्व करने वाली खान बहने माइशा और ताबिया।
4: तो मेरी मम्मी मुंबई से, पापा मध्य प्रदेश से, तो वो लोग जॉब के लिए यूएई में आए थे, तो हम लोग बॉर्न ब्रॉट अप यूएई में है, स्कूलिंग सब उधर ही करा है, लेकिन अभी थोड़े साल पहले यूएई को रिप्रेजेंट करना शुरू करा है। इससे पहले स्टेट नेशनल सब इंडिया में एमपी की तरफ से खेलते थे।
0: उसी देश के झंडे के नीचे वुमेन सिंगल्स में खेल रही थी प्राकृति भारत।
5: I'm from Tamil Nadu, but I was settled in the Gulf. I live in Dubai right now, and I've joined the national team over there, and I've been playing for a year and a half now, representing UAE.
0: अलवर में जन्मी इशिका जायसवाल ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई भी किया।
6: सो आई एम फ्रॉम अलवर राजस्थान एंड आई वाज बोर्न हियर, सो आई एम स्टिल एन इंडियन पासपोर्ट। या आई फ्रीक्वेंटली कम हियर, ऑल माय फैमिली इज हियर। देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियंस इन आवर एकेडमी एंड बट नाउ यू विल बी सीइंग अ लॉट मोर इंडियन।
0: मेडल आए, कुछ उम्मीदें टूटी और कुछ नई उम्मीदें जन्मी, लेकिन सबसे बड़ी जीत शायद ये रही कि बैडमिंटन ने एक बार फिर सबको एक साथ ला खड़ा किया। भारत अभी इस खेल की महाशक्ति नहीं, मगर मंजिल की ओर बढ़ते कदम साफ दिखाई दे रहे हैं, और जब कदम बढ़ते रहें तो सपने भी बड़े होते रहते हैं। इन सपनों के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से आप सभी का दिल से आभार। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026 के हर दिन की डिटेल्ड रिपोर्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी के साथ मैं दर्पण टिकिया।
7: शोर मचाले हो दिल्ली जब शटल हवा में उछले यहाँ, शोर मचाले हो दिल्ली जब शटल हवा में उछले यहाँ।
8: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
9: सकाळचे 7:45 होत आहेत। कार्यक्रम ऐकूया अज्ञात मुंबई भाग 104।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा

0: और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बाहर लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक और खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोफ से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा

0: आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इसराइल के और ब्रॉनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ

0: इतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में पांचवें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: हर हर महादेव।
3: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स अपॉन कंट्री स्पेस सेक्टर टू क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट अट्रैक्ट्स ग्लोबल स्पेस टैलेंट टू इंडिया। Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kanizsa Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
6: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है बहुत लोगों को हमें जोड़ना है हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है हिंदुस्तान जाओ भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ मैं पक्का मानता हूँ जी पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है.
5: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
6: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे बदलाव न करें ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है. दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं.
5: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the two-day 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. More from our correspondent.
7: The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. This annual strategic forum enables coordination among intelligence, paramilitary and police leadership on internal security, border management and emerging threats. During the DGP-IGP conference in 2016, Prime Minister Narendra Modi had directed the security and police heads to hold the National Security Strategies Conference every year, with the objective of finding solutions to major national security challenges using the extensive experience of the cutting-edge level officers working at the grassroots level in collaboration with domain experts. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
5: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will co-chair the 27th India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation with First Deputy Prime Minister of Russia, Denis Manturov, in Moscow today. He will also meet his Russian counterpart, Sergei Lavrov, and exchange perspectives on regional and global issues. More from our correspondent.
8: Dr. Jayashankar arrived in Moscow yesterday on a two-day official visit to Russia. He is visiting Russia at the invitation of First Deputy Prime Minister of Russian Federation, Denis Manturov. India and Russia have a long-standing and time-tested partnership. Since the signing of the declaration of the India-Russia Strategic Partnership in October 2000, India-Russia ties have acquired a qualitatively new character with enhanced levels of cooperation in almost all areas, including political, security, defense, trade, and economy, science and technology, culture and people-to-people ties. Under the strategic partnership, several institutionalized dialogue mechanisms operate at both political and official levels to ensure regular interaction and follow-up on cooperation activities. The India-Russia Intergovernmental Commission has two divisions, trade, economic, scientific, technological and cultural cooperation, and military and military-technical cooperation. Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
5: 18th BRICS Academic Forum started in Lucknow yesterday and the deliberations will continue till Tuesday as part of India's BRICS presidency. More from our correspondent.
9: The Observer Research Foundation, in partnership with the Research and Information System for Developing Countries,

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय ठीक 8:40 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम मस्त मुंबई का। और आज का हमारा शीर्षक है मुंबई के मस्ताने। मैं हूँ आरजे किरण माला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय ठीक 9:01 हुए हैं और हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी 8:40 से। जी हाँ, मैं हूँ आरजी किरण वाले से। मैं आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज है 24 अगस्त 2026, सोमवार का दिन है। इतिहास में आज का दिन हमेशा खास रहेगा। महान देशभक्त शिवराम हरि राजगुरु की आज बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म

24 अगस्त 1908 को खेड़ पुणे में हुआ था। वो हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन के सदस्य थे, तो हम उन्हें आज कोटि कोटि नमन करते हैं।

9:08 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई। और अभी जो गाना आपने सुना फिल्म आन मिलो सजना से, और गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। आज भारतीय क्रिकेट टीम की एक खिलाड़ी पूनम यादव का हैप्पी हैप्पी बर्थडे है। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एक बहुत ही सफल लेग स्पिन बॉलर रही हैं। इन्होंने भारतीय महिला टीम को कई शानदार जीत दिलवाई है। 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से पूनम ने डेब्यू किया था। 2013 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में इनका जन्म हुआ। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए कई सारे मैच खेल चुकी हैं। पूनम जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
2: 9:16 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का नाम भला कौन नहीं जानता। आज इस जोड़ी के बड़े भाई कल्याण जी वीर जी शाह की पुण्यतिथि है। 24 अगस्त 2000 को मुंबई में इनका निधन हो गया था। कल्याण जी का बचपन मुंबई के गिरगांव इलाके में बीता। 1954 में आई फिल्म नागिन में इन्होंने बीन म्यूजिक बजाया था, जिसकी वजह से पूरे फिल्म जगत में उनकी चर्चा हुई थी। 1968 में फिल्म सरस्वती

चंद्र के संगीत के लिए इन्हें भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। 1992 में इन्हें पद्मश्री भी मिला। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। कल्याण जी, आपके गाने, आपका संगीत हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा।

जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाए जापानी।

9:22 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई। जी हाँ, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शहर का आज ही के दिन जन्म हुआ था। साल था 1690 और दिन था 24 अगस्त का। जॉब चारनॉक, जो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट था, वो पश्चिम बंगाल में एक घाट पर उतरा। उस घाट का नाम था नीमतला। यहाँ पर हुगली नदी के किनारे पर उसने अपने तंबू लगाए और इस जगह को एक नया नाम दिया, कलकत्ता। बाद में बदलकर इसका नाम कोलकाता कर दिया गया। कोलकाता आज हिंदुस्तान का एक बड़ा शहर है। ये एक व्यापारिक शहर भी माना जाता है। साथ ही साथ यहीं पर बंगाली फिल्म उद्योग भी है।

मर जाओगे प्यार करो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका

ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाता हूँ।

9:41 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। हमारे एक श्रोता है जिनका नाम है महेश बोरा, अजमेर राजस्थान से लिखते हैं कि आज ही के दिन 24 अगस्त 1921 को दिल्ली के एक सरकारी संगीत शिक्षक राजकुमार जी ने लगातार 32 घंटे तक सितार वादन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज आपने भेजा है आज के दिन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय ठीक 9:46 हुए हैं और कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई। तो दोस्तों, आप सभी ने रिचर्ड सैमुअल एटनब्रो का नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक अंग्रेज अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक थे। इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। 24 अगस्त 2011 को लंदन में इनका निधन हो गया था। भारत में उनकी चर्चा एक खास वजह से की जाती है। जानते हैं क्यों? जी हाँ, क्योंकि फिल्म गांधी की वजह से। रिचर्ड एटनब्रो इस फिल्म के निर्माता भी थे और निर्देशक भी थे। ये फिल्म महात्मा गांधी की जिंदगी और आज़ादी की लड़ाई पर आधारित थी। ब्रिटिश एक्टर बेन किंग्सले ने गांधी जी का रोल इस फिल्म में किया था। ये फिल्म 1982 में आई थी।

जी हाँ, समय ठीक 9:52 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गांधी फिल्म को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ये फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म को कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड

अवार्ड्स भी मिले। इस फिल्म में ब्रिटिश एक्टर्स के साथ साथ कई सारे हिंदी सिनेमा के कलाकारों ने भी काम किया था। जब ये फिल्म बन रही थी तब इस फिल्म की बहुत चर्चा थी कि आखिर महात्मा गांधी जी का रोल किस अभिनेता को मिलेगा। ब्रिटिश अभिनेता बेन किंग्सले को ये रोल मिला। हम आपको बताना चाहते हैं कि उनके पिता एक गुजराती थे। जन्म के समय बेन किंग्सले का नाम कृष्णा पंडित भांजी रखा गया था। उनकी मदर एक इंग्लिश अभिनेत्री और मॉडल थी। तो कार्यक्रम मस्त मुंबई में आज बस इतना ही। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद होगा कार्यक्रम नमस्ते भारत।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। महाराष्ट्र के अमरावती में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने से 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार करीब 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। आग लगने के बाद बचाव दल ने शिशुओं को सुरक्षित निकाला और उनमें से कई अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्धपोतों और अन्य जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

10:02 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम नमस्ते भारत का, और इसमें आप सुनते हैं है प्रीत जहां की रीत सदा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ और एक बार सभी श्रोताओं को

10:09 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो। मैं हूँ आरजे किरण माला इस समय आपके साथ। तो दोस्तों, हम सभी के घरों में रोज खाना बनता है। अगर किसी वजह से घर में खाना ना बन पाए तो होटल रेस्टोरेंट जिंदाबाद, यानी घर से बाहर निकले और आराम से किसी अच्छे होटल में खाना खाकर आ जाए, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दे या मोबाइल से कॉल करे, जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं थोड़ी देर में आपके घर पर आ जाएगा, बस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, मैंने अक्सर देखा है कि हमारी सोसाइटी में ही देर रात तक 3-4 बजे तक लोग खाना मंगवाते रहते हैं। ये कैसा लाइफस्टाइल हो गया है। चलो कोई नहीं, हमें उनसे क्या लेना देना है, हमें तो यहाँ पर गाना प्ले करना है और वो भी एक से बढ़कर एक, ताकि आपको बहुत पसंद आए। तो चले बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर और उसके बाद हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन तब तक आप इंजॉय करिए इस गाने को।

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

सात दिन का ये गाना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जी हाँ, सवाल ये है कि पहले आप सुन लीजिए ध्यान से और जल्दी से हमें उत्तर दीजिए, क्योंकि आपके पास थोड़ा कम समय होगा। मैं आपके लिए दो गाने बैक टू बैक प्ले करूंगी, आपको समय दे दिया जाएगा समझने के लिए, जानने के लिए उस सवाल का उत्तर क्या है। अगर किसी वजह से घर में खाना नहीं बनता है तो फिर बाहर का फूड ही हमें खाना पड़ता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि घर में भी खाना ना बने और हमें होटल का खाना भी ना खाना पड़े। आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां महिलाएं घर में चूल्हा या गैस नहीं जलाती है और खाना भी नहीं बनाती है, लेकिन फिर भी उन्हें घर का खाना ही खाने के लिए मिलता है। अगर आप इस गांव का नाम जानते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें जल्दी से जल्दी बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। तो जल्दी से जवाब दीजिए, लेकिन तब तक इंजॉय करते हैं हमारा अगला गाना।

0: के दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट।
1: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी, तो बात चल रही है मंडे की। वक्त भी निकला जा रहा है, वक्त भी साथ साथ चल रहा है। देखिए, मंडे का तो मंडे तो हर रोज हर हर बार आएगा ही। अच्छा, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है जिसे आप लगातार कहते आ रहे हैं कि कर लेंगे? मतलब हमेशा ना ऐसा कोई ना कोई काम जरूर होता है जिसे हम बहुत वक्त से टालते हुए आ रहे हैं और हमें करना होता है और हम कर नहीं रहे होते हैं कि चलो ये बुक बाद में पढ़ लेंगे, ये काम जो हमें नया शुरू करना है ये बाद में कर लेंगे, अगले मंडे से, 1 तारीख से। और कभी-कभी तो हम खुद से मिलने का टाइम भी बाद में रख देते हैं कि अभी कुछ सोच रहे, चलो बाद में सोचते हैं, अभी ये काम कर लेते हैं। अजीब बात है ना, ये बात बहुत सच में अजीब है। और इस आदत को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर सकते हैं, कोशिश ही कर रहे हैं हम सब कुछ ना कुछ करने की। तो हमारे पास ना, हम सोचते हैं बहुत सारा टाइम है, लेकिन टाइम जो है हमारे हिसाब से नहीं चलता। हम अपनी आदतें अपने हिसाब से, अपना दिन अपने हिसाब से चला सकते हैं। स्लो मन नहीं है, ये नहीं है, लेकिन लाइफ है और टाइम है, वो अपनी रफ्तार से ही चल रहा है। तो वो नहीं रुकने वाला, घड़ी नहीं रुकने वाली। हम चाहे 5 बार अलार्म बंद करें या कुछ भी करें, पूरा दिन होना ही है। यदि हम कुछ करेंगे तो भी, और नहीं करेंगे तो सुबह से शाम भी हो ही जाएगी। ठीक है, इसीलिए शायद ना जिंदगी को हर दिन कुछ बहुत बड़ा प्रोडक्टिव बनाने की, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की, अपने ऊपर बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना काफ़ी है कि आज को पूरी तरह कल पर मत डालिए। थोड़े काम कुछ आज कीजिए, कुछ कल कीजिए, उससे बैलेंस बन जाएगा, उससे चीज़ें मैनेज रहेंगी। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए एक बहुत कोई बड़ा कदम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे छोटे कदम ही एक बड़ा जो है डिसीजन या एक बड़ा हमें रिजल्ट धीरे धीरे करके दे देते हैं। और इसी के साथ सुनिए हमारा अगला गाना।

0: हैदराबाद की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

ब्रेक फ्री जो है अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। समय हो रहा है 11:51 और बात चल रही थी संडे को मंडे को हैप्पी मंडे बनाने की। तो आज की बात को बस इतनी सी लाइन में समेटते हैं, आराम कीजिए लेकिन अपनी ज़िंदगी से गायब मत हो जाइए। थक गए हैं तो थोड़ा रुक जाइए, मन नहीं है तो थोड़ा खुद को समय दीजिए, लेकिन हमेशा कल से कहते कहते आज को हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी हमारे रुकने से नहीं रुकती है। हम अलार्म बंद कर सकते हैं लेकिन दिन को बंद नहीं कर सकते, वो चलता रहेगा, वो हर रोज़ निकलेंगे। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, आराम से खुद के मन की बात सुननी है और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने दिन की शुरुआत करनी है। और इसी तरह से हम इस काम टालने की और ना करने की आदत से भी ब्रेक फ्री हो सकते हैं। तो इसीलिए बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि हर दिन को ज़बरदस्ती परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए कि बहुत कुछ किया है तभी आपका दिन सफल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी दिन स्लो भी होते हैं। तो बस आज अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अपने काम की शुरुआत कीजिए और ज़िंदगी जैसी चल रही है उसे चलने दीजिए और बाकी FM रेनबो सुनते रहिए मेरे आज इस स्वेच्छा के साथ। आपको आखिरी गाने के साथ ब्रेक फ्री जो है ख़त्म होने वाला है और इसके बाद हम मिलेंगे म्यूज़िक कैफ़े में। तब तक के लिए सुनिए आखिरी गाना और आप सभी को हैप्पी मंडे।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। इस घंटे के मुख्य समाचार। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र को पारित किया गया, जिसमें सदस्य देशों ने बातचीत, आपसी सम्मान और समावेशिता के माध्यम से खेल के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और खेल क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। महाराष्ट्र के अमरावती में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल में हुई दुर्घटना में 3 बच्चों की मौत होने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा शोक व्यक्त किया है। दुर्घटना में मृत शिशु के परिवार को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। राज्य के स्वास्थ्य विभाग को घटना की उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं। मराठी के व्याकरणविद यास्मीन शेख का आज सुबह पुणे में निधन हो गया। उन्होंने 101 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। यास्मीन शेख एक लेखिका तथा मराठी भाषा व्याकरण और भाषा विज्ञान की शिक्षिका थीं। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने 9 राउंड में 7 अंक हासिल किए और 3 अन्य खिलाड़ियों के साथ शीर्ष स्थान साझा किया। धन्यवाद।

जी समय हो रहा है ठीक 12:08 और म्यूजिक कैफे में हम एंटर कर चुके हैं। तो आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ म्यूजिक कैफे में। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। मैं हूँ आरजे स्वेच्छा। तो जब मंडे की बात चली रही थी तो मौसम की भी बात कर लेते हैं। इस समय जो मौसम है वैसे तो बारिश का है, लेकिन कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही है। मौसम बड़ा ह्यूमिड हो रहा है, मतलब उमस हो रही है, बहुत गर्मी भी हो रही है, अच्छा भी हो रहा है, मिक्स्ड मौसम है। तो उसी की तरह हमारी प्लेलिस्ट भी गाने के ऊपर नीचे चलती रहती है। वैसे कुछ गानों का ना मौसम से भी अजीब सा कनेक्शन होता है। बारिश हो तो अचानक कुछ गाने याद आने लगते हैं, सर्दी में अलग तरह के सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, गर्मियों में कुछ, यानी मतलब हर मौसम के अपनी अपनी प्लेलिस्ट होती है। और कई बार तो मौसम कुछ भी हो, हमारा मन बस जो कहता है ना हम वही सुनते हैं, हमारा दिमाग खुद ही अपना एक ब्रैक

बैकग्राउंड म्यूजिक चुन लेता है और हमें लगता है आज तो हमने यही सुनना है बस। तो आज अगर बाहर का मौसम आपके हिसाब से ठीक हो या नहीं हो वो तो चलता रहेगा, तो यदि आज का मौसम आपके हिसाब से एक गाना होता तो वो कौन सा गाना होता? तो वो कौन सा गाना आप सुनते जिसको सुन के आप को यदि मौसम अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है लेकिन आप वो गाना सुन के सब कुछ अच्छा फील करने लगते? तो आप सोचिए और तब तक सुनते हैं एक ऐसा गाना जो इस वक्त हमारे म्यूजिक कैफे के मूड को बिल्कुल बदल दे या बिल्कुल उसमें फिट हो जाए। तो चलते चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना।

0: आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मॉस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी, जैसे मैंने सवाल पूछा था कि गाना आपकी प्लेलिस्ट मौसम के हिसाब से आपकी प्लेलिस्ट क्या कहती है, कौन सा गाना होने वाला है, तो काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग तरह के आंसर दिए हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट भी आई है। तो फिरोज़ जी ने बोला है ये मौसम बड़ा बेईमान है, और उन्होंने ये बोला है, और कई लोगों ने बोला है कि उन्हें प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और प्लेलिस्ट बहुत पसंद आ रही है। तो बिल्कुल, अब प्लेलिस्ट तो इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि मैं भी मौसम के हिसाब से ही चला रही हूँ, आपसे बातें करती हूँ, आपके मैसेजेस पढ़ते हुए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। और बात रही म्यूज़िक कैफ़े की, तो वो भी अपनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और हम भी इस मंडे को इस म्यूज़िक कैफ़े को एंजॉय कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे हैं। तो वैसे मौसम ठीक है, जैसा भी हो, चाहे जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कोई गाना बस गाना नहीं होता, इसके साथ कोई ना कोई जगह जुड़ी होती है, कोई इंसान या कोई मेमोरी, कोई सफ़र या कोई यू नो छोटा सा किस्सा। वो मतलब हमारी कोई ना कोई गाना ऐसा होता है, या कई सारे, सिर्फ एक नहीं, कई गाने ऐसे होते हैं जो हमें ना किसी की याद दिला देते हैं। कुछ ना कुछ हम पास्ट में पहुंच जाते हैं, या हो सकता है कि हमने कल ही कुछ ऐसा देखा हो, जब हम कोई गाना सुन रहे हैं, कोई हमारे सामने इंसिडेंट हुआ हो, या हमारे किसी फ्रेंड की बात हमें याद आ गई हो, या हमारे किसी फैमिली का कोई किस्सा याद आ गया हो। तो जैसे ही वो गाना जब एकदम सुनते हैं तो एक लगता है, अरे ये तो उस समय सुना था ना जब हम ये कर रहे थे, या उस इंसान के साथ सुना था। तो म्यूज़िक की सबसे खूबसूरत बात ना यही है कि हमें जो है मेमोरीज़ को मतलब मेमोरीज़ देता है, और हमें ना हमेशा गानों की वजह से कई बार बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो याद रह जाते हैं। तो ना आज म्यूज़िक कैफ़े में आप भी ज़रा सोचिए आपका कौन सा गाना है जिससे सुनते ही आपको कोई पुराना मोमेंट या कोई बात या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट है, या कोई इंसान, कुछ भी ऐसा याद आता है, तो वो ज़रूर बताइए। और हम सुनते हैं इसी बात पे एक अगला गाना।

न्यूज़ के बाद हमारे कार्यक्रम में, जिसमें आप अपने सॉन्ग फरमाइश कर सकते हैं, तो आप अपने सॉन्ग की फरमाइश हमें भेजते रहिए हमारे व्हाट्सएप पे, और बाकी हम मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए
1: जी। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं
1: जी। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
1: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
2: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
2: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं
1: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
2: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा
1: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
2: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं की, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
2: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती

0: हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्न उत्तरी में भाग लेने के लिए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे।
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिद्धि तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था।

0: और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
1: टैथिस महासागर।
0: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
0: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे, एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
3: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
3: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया। सर इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आमतौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
3: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
3: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं। जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
4: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
5: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
4: Marvelous.
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
3: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
2: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
3: मूर्ति के हाथ नहीं थे लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
2: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
3: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
5: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
6: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
2: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
3: उस मूर्तिकार ने बताया,
7: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
2: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
4: ग्रेट, मार्वेलस। हाँ,
6: अवसर ऐसा ही होता है।
4: वंडरफुल।
8: हाँ, हम सहमत हैं।
2: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है।

0: कलाकार ने बताया।
1: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है, यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
0: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
2: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
0: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
2: कहीं ऐसा ना हो कि
0: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

जी आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। मैं हूँ आरजे स्वेच्छा और समय हो रहा है ठीक 1:10 और कार्यक्रम चल रहा है हिट एंड हॉट, जो कि हमारा फरमाइशी कार्यक्रम है। आप सबकी फरमाइशें जो हैं भर भर के आ रही हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको पूरा करने की। सबसे पहला जो गाना था मैंने इसीलिए प्ले किया क्योंकि कई लोग सावन के महीने की जो है बधाई दे रहे थे, मतलब शुभकामनाएं दे रहे थे और कह रहे थे कि सावन का महीना चल रहा है और ख़त्म होने वाला है जो चल रहा है, और मौसम की भी बातें हुई, बारिश की भी बात हुई। तो मैंने सोचा इससे अच्छा क्या ही एक कारण हो सकता है, क्या ही एक रीज़न हो सकता है शो को शुरू करने का। तो ये गाना मुझे सबसे बेस्ट लगा। अब हम जो भी लोग हमारे साथ पिछले 3 घंटे से और भी पहले से जुड़े हुए हैं, पर मेरे साथ 3 घंटे से जुड़े हुए हैं शो में, तो मैं चाहूँगी मैं उनकी फरमाइशें पूरी करने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले मैं पंकज मौहर जी का गाना बजाऊँगी नेक्स्ट, अनदेखी अनजानी। उसके बाद मेहर अरोड़ा जी का जब भी जी चाय नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, दीपा पालकर जी का मौसम है आशिकाना। इन 3 गानों के बाद हम फिर से मिलते हैं, फिर से बात करते हैं। प्रणव शिंदे जी का भी गाना आया है हम अपनी तरफ से। मैं ये गाने प्ले करती हूँ, उसके बाद हम फिर से बात करते हैं और आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते रहिए। और हमारा नंबर है 8657661071, आप हमें इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो 107.1 म्यूजिकली योर्स।

समय हो रहा है 1:28 और शो अपनी गति से चल रहा है। आपकी इतनी सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि उनको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बीच में कुछ नाम ले देती हूँ जो हमारे साथ पूरे टाइम जुड़े रहे हैं और जिनका गाना मैं प्ले करूँगी उनका नाम मैं गाने के साथ ले दूँगी। अभी तक जैसे जो गाने चल गए हैं उनके बाद अभी हमारे साथ जो हैं जुड़े हुए हैं बाबा दादर से राजेंद्र परमार, हितेंद्र दास, संजय दर्शन, श्रेय राउत, अंजू जी अंधेरी से, दीदी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अभिजीत गावनकर जी और राकेश माथुर जी की रिक्वेस्ट थी जह नसीब, तो उनकी रिक्वेस्ट प्ले हो चुकी है। आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब अगला हम जो है गाना सुनेंगे दीपा पालकर जी का पिंगा, उन्होंने बाजीराव मस्तानी से जो है फरमाइश की है, और अजय साखरे जी का बोले चूड़ियाँ, और उसके बाद हम सुनेंगे फिरोज जी का पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए और जितना भी वक्त बचेगा मैं कोशिश करूंगी आप सभी की रिक्वेस्ट पूरी करने की। आप हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

जी, प्रोग्राम चल रहा है हिट एंड हॉट और आप सबकी फरमाइशें एक पे एक चलती जा रही हैं, एक के बाद एक चलती जा रही हैं। देखिए, काफ़ी सारे नाम हैं जिनको मैं बोल देती हूँ, गाने हार्डली एक दो ही बच पाएंगे, पर मैं नाम ले देती हूँ जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके नाम जिनके गाने हम प्ले करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए गुरमीत सिंह जी और पंजाब से सोनू, लकी, गुलशन, राज, रवि राज, ये लोग भी जुड़े हुए हैं पंजाब से, और हितेंद्र दास जी जुड़े हुए हैं, हीरामणि वर्मा, मुकेश कश्यप, सुबलक्ष्मी मस्तकर और संदीप कुमार, राकेश माथुर, अशोक पाटिल, प्रमोद चिंचोलकर और भी कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। और एक हमें जस्ट अभी मैसेज आया है कि स्मितेश मुकणे जो कि हमारे नए श्रोता हैं और उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक गाना डेडिकेट किया है, तुम जो आए ज़िंदगी में पात बन गई, तो वो गाना भी हम ज़रूर सुनेंगे। और एक गाना हम सुनेंगे, एक गाना और सुन सकते हैं, तो वो हम देख रहे हैं कि वो किसका सुनेंगे। विजेंद्र घटोला जी अकोला से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन उनका गाना प्ले नहीं हो पाया, अभी कोशिश करती हूँ उन्हीं का गाना प्ले करने की। और बाकी हम पल पल दिल के पास फिरोज़ जी का प्ले करेंगे और रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजन हजारी जी झारखंड से, अभिजीत गावनकर जी, मेहर अरोड़ा जी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई जगह से काफ़ी सारे लोग। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ इस तरह जुड़कर हमारे शो को स्पेशल बनाते हैं। बस मैं यही कहूँगी, आप सब ऐसे ही FM रेनबो सुनते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हमें बस आप हमारे साथ, हमारे रेडियो चैनल के साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहिए। और मुकेश कश्यप जी, दिग्दर्शन और कविता जी, संदीप अजमेरे जी, हीरामणि वर्मा जी, तो इसी के साथ समय हो गया 1:50 और शो चल रहा है हिट एंड हॉट। अब मैं आपको इन दो गानों के साथ छोड़ के जा रही हूँ और हमारा शो जो है अब रैपअप करने का, इसको समेटने का वक्त आ गया है। आज का हिट एंड हॉट कार्यक्रम यही समाप्त होता है और मैं आपको छोड़े जा रही हूँ कुछ गानों के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखिए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। ऐसे ही गाने इन्जॉय कीजिए, मौसम इन्जॉय कीजिए और आज का दिन भी। और हाँ, लास्टली हैप्पी मंडे। तो थैंक यू सो मच, मैं हूँ RJ स्वेच्छा। अब हम मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
3: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana, Kishan Credit Card schemes, and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance. And field demonstrations for maize farmers.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
4: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
1: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
2: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपने को हम साकार करेंगे।
0: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
3: PMFME की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने MOU साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुस जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुस जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुस जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंडे इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने JPSC परीक्षा में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है लव यू जिंदगी में। मैं हूं उर्वशी आपके साथ। इस घंटे आपके साथ बहुत सारे गाने, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ खूबसूरत गाने सुनाती हूं लव यू जिंदगी में। जिंदगी से प्यार करने वाली बातें और मंडे ब्लूज की बातें करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन तब तक सुनिए ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना।

कितना खूबसूरत गाना सुन रहे थे आप रोजा फिल्म से। अभी लेकिन बॉम्बे में तो बारिश का मौसम है, कभी कभी धूप भी निकल आती है, तो ये हंसी वादियों वाली जो बात है वो तो हम सभी के सपनों में ही है। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं, क्या चल रहा है? आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। और हाँ, रिक्वेस्ट आवर भी आने वाला है थोड़ी देर में, तो उसके गाने भी अपने दिमाग में सोच के रखिएगा। वैसे आज मंडे है, आप सभी भी 2 दिन का अच्छा सा ब्रेक लेके अपने अपने काम पे गए होंगे और सोच रहे होंगे कि यार एक आध दिन की छुट्टी और मिल जाती तो थोड़ा अच्छा लगता ना। होता है ना कभी कभी कि 2 दिन की छुट्टी या 1 दिन की छुट्टी में आपका मन नहीं भरता और मंडे ब्लूज कुछ ज्यादा ही हिट करते हैं। होता है कभी आपके साथ? मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए। और सुनिए ये नेक्स्ट बहुत ही प्यारा गाना आपके लिए।

लापता लेडीज़ का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि सुन लो तो मूड अच्छा हो जाता है और कहने का मन होता है लव यू ज़िंदगी। लव यू ज़िंदगी सुन रहे हैं आप मेरे यानी उर्वशी के साथ। और सुनते सुनते गाने मुझे एक ख्याल आया कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मंडे को अगर छुट्टी मिल जाए तो आप क्या करोगे। तो मुझे व्हाट्सएप पे बताओ कि अगर अचानक से संडे रात को आपके बॉस का आपको मैसेज आए कि भाई चलो आज हम आपको छुट्टी देते हैं, आज आपको जो करना है करिए, तो आपकी प्रायोरिटी में सबसे पहले लिस्ट में क्या आएगा मुझे मैसेज करके बताइए। और जो इंटरेस्टिंग सा आंसर मुझे मिलेगा डेफिनेटली मैं उसको पढ़ूंगी अपने शो में। लेकिन उससे पहले सुनिए खूबसूरत सा गाना मेरे यानी उर्वशी के साथ। बने रहिए FM रेनबो 101 मुंबई पे।

हेलो नमस्कार। थोड़ी देर पहले ही मैंने सवाल पूछा था कि अगर आपके बॉस का आपको संडे को फोन आए और बोले कि भाई चलो मंडे की छुट्टी है तो आप क्या करोगे। लव यू जिंदगी सुन रहे हैं आप मेरे यानी उर्वशी के साथ। तो मुझे बहुत ही खूबसूरत आंसर्स आए हैं। सबसे पहले प्रणव शिंदे जी का आंसर आया है कि अगर बॉस खुद फोन करके कह दे कि सोमवार की छुट्टी है तो सबसे पहले अपनी नींद और सुकून को सबसे बड़ी प्राथमिकता देना चाहता हूँ। जी शिंदे जी, अलार्म बंद कर दिया जाए और दुनिया से नाता तोड़ लिया जाए। एकदम करेक्ट उन्होंने दिया है कि अगर मैं मंडे को ब्लूज के बारे में सोनू, संजय दर्शन का मैसेज है कि मैं ब्रेक फ्री में रहना चाहूँगा। वो बातें उन्होंने भी की है। राकेश माथुर जी एकदम इंस्पायरिंग सी बात करते हैं कि आई डो नॉट बिलीव इन मंडे ब्लूज, क्योंकि अगर मंडे को छुट्टी है तो ट्यूसडे को काम पर जाने का मन नहीं करेगा। जी ये तो बहुत ही सही बात है आपकी, और ट्यूसडे को भी ब्लूज ही फील होंगे तो ये एक बहाना है। और वो बोलते हैं कि मैं कुछ महीने पहले ही रिटायर हो गया हूँ, लेकिन जब मैं काम पे जाता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी बहुत ही अच्छी बात है। विजेंद्र घटोल अकोला से बोलते हैं कि उर्वशी जी मैं तो किसान हूँ तो मैं रोज ही खेत में काम करता हूँ। तो जी लेकिन आपकी खेतों में काम करने वाली खूबसूरत सी जगह है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अपने खेत की एक फोटो भी मुझे भेजी है। तो जी सर, अगर यहाँ पे काम करना है तो मंडे ब्लूज जैसा कुछ होगा ही नहीं डेफिनेटली। तो लव यू जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत आपने मुझे आंसर दिया, थैंक यू सो मच। अभी सुनिए ये बहुत ही प्यारा गाना।

लव यू जिंदगी में आप मेरे यानी उर्वशी के साथ हैं, और बातें चल रही थी कि कैसे अगर मंडे की छुट्टी मिल जाए तो आप उसका फ़ायदा उठाएंगे। फिरोज़ जी का मैसेज आया है सिंहपुरिया, फिरोज सिंहपुरिया का, कि मैं तो जी गिरगांव चौपाटी पर स्विमिंग करने चला जाऊंगा दोस्तों के साथ, साउंड्स लाइक अ प्लान जी। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे और बहुत ही मज़ा आया लव यू जिंदगी में। संजय जी का, प्रणव श्री का, राकेश जी का, सबके मैसेजेस हैं। और अब बस लव यू जिंदगी का टाइम ख़त्म होता है, थोड़ी ही देर में आप समाचार भी सुनेंगे और उसके बाद जब मैं आपको मिलूंगी तो मिलूंगी अंदाज़े बयां में कुछ खूबसूरत शेर और कुछ गज़लों के साथ जैसे हमेशा मिलती हूँ। तो मेरे साथ यानी उर्वशी के साथ बने रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो, क्योंकि यहीं पे आपको बहुत ही खूबसूरत से गाने और बातें सुनने मिलने वाली है आज के मंडे ब्लूज़ को किल करने वाली।

0: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं।
1: सघन सावन

ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे, ये लगती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे।

0: दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है।
1: लाख बार उसमें

न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां, आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो पर यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। अभी 7 बजे तक मैं आपके साथ कुछ शेर शायरी गज़लों का माहौल बनाने की कोशिश करने वाली हूँ। कुछ खूबसूरत से शेर आपके लिए लेके आई हूँ। एक गज़ल आपने सुनी, एक गज़ल मैं आपको सुनाने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ एफएम रेनबो पे।

हेलो, अंदाज़े माया में हैं आप मेरे यानी उर्वशी के साथ एफएम रेनबो पर। और कुछ शेर आज जब मैं बारिश में ऑफिस आ रही थी तब मुझे याद आए, क्योंकि जब मैं लगभग ऐसा हो रहा है कुछ दिनों से कि जब जब मैं ऑफिस आ रही होती हूँ, स्टूडियो आ रही होती है आकाशवाणी के, तो कहीं थोड़ी तेज़ या कभी कभी धीमी धीमी बारिश तो हो ही जाती है। और जब बारिश होती है ना तो पुराने दोस्त याद आते हैं, पुराने शहर याद आते हैं जहाँ से आप आए थे शायद। तो कैफ भोपाली का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि कैफ परदेस में मत याद करो अपना मकान, कैफ परदेस में मत याद करो अपना मकान, अब के बारिश ने उसे तोड़ गिराया होगा। कैफ साहब की ये बहुत ही खूबसूरत सी बात के साथ मैं आपको सुनाने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल एफएम रेनबो पर।

और इस बहुत ही खूबसूरत गाने के बाद मैं उर्वशी फिर से एक बार आप सभी के साथ अंदाज़े बयां में एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है मुनीर नियाज़ी साहब का कि गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया मैंने तुझको खोया नहीं। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे लिसनर्स जो अभी सुन रहे हैं मुझे, उन सभी के लिए, उन सभी को डेडिकेटेड ये शेर अंदाज़े बयां बस अब कुछ ही वक्त में ख़त्म होने वाला है और आप 7 बजे सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे साथ और उसके बाद फिर से एक बार हम तुम में आप सभी की फरमाइश मैं पूरी करूंगी, कोशिश करूंगी कि आप सभी की फरमाइश पूरी कर सकूं। आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं एक बार नंबर, जो लोग रेगुलर मैसेज करते हैं उनको तो पता ही है लेकिन शायद कोई नया हो तो उसके लिए 8657661071 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी फरमाइश के गाने। और आपने फील सुना है ना मैं कितने जो गाने बजा रही हूँ 2 घंटे से, तो उसके आसपास के गाने ही अगर आप मुझे बताएंगे तो बजाएगा, लेकिन आपकी फरमाइश है पूरा करना मेरी क्या बोलते हैं जिम्मेदारी है, तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे आप सभी की फरमाइश को लेने की। अब हम मिलेंगे इस गाने और न्यूज़ के बाद हम तुम में।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: हेलो, और मैं फिर एक बार वापस आ चुकी हूँ। मेरा नाम है उर्वशी, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर। अब समय हो चुका है हम तुम का, हम तुम में हम आपकी ही फरमाइश के गाने आपके लिए बजाते हैं। कुछ फरमाइश तो पहले से ही मेरे पास आ चुकी है और कुछ कुछ गाने अब मैं थोड़ी देर में बजाने भी वाली हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितने हो सके उतने लिसनर्स की फरमाइश मैं पूरी करूँ, लेकिन आप सोचिए ना मुझे कितना कम समय मिलता है आपकी फरमाइश को पूरी करने के लिए। तो जितने हो सके गाने मैं लेने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर किसी का गाना छूट जाए, कुछ रह जाए, तो प्लीज़ ज़रा दिल बड़ा रखिएगा। जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब पक्का कोशिश करूँगी कि आपकी फरमाइश के, आपके पसंद के गाने मैं बजा सकूँगी। और मैं कोशिश तो करती हूँ कि नाम मैं सभी के लूँ, ताकि जिन जिन ने मैसेज किया है उनको ऐसा ना लगे कि उनको मैंने नोटिस नहीं किया था। नहीं, मैं आप सभी के मैसेज पढ़ती हूँ, लेकिन एक सिर्फ समय की ही तकलीफ़ हो जाती है कि आप किसके गाने लो, किसके छोड़ दो, और सभी की फरमाइश इतनी खूबसूरत आती है कि क्या बताऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी हम तुम के सफर की। तीन गाने मैं बैक टू बैक बजाने वाली हूँ ताकि आप सभी की फरमाइश फटाफट पूरी हो और मेरी बातें आपके गाने के साथ ही मैच हो जाए। तो सबसे पहली जो फरमाइश आई है वो है दिग्दर्शन और कविता की। उनकी फरमाइश है पैडमैन फिल्म का गाना आज से तेरी गलियां मेरी हो गई। फिर मैं बजाऊंगी दीपा पालकर जी की फरमाइश पर, दीपा जी का जो फरमाइश का गाना है जब वी मेट फिल्म का आओगे जब तुम साजना। उसके बाद मैं बजाऊंगी अजय सखारे जी की फरमाइश का गाना चांदनी फिल्म से लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। बहुत ही खूबसूरत गाने हैं तीनों, आप सुनिए बैक टू बैक। और अगर आपको भी अपना गाना भेजना है तो मुझे आप 8657661071 पे भेज सकते हैं। तो चलिए इन तीन गानों के उन पार मैं आपको मिलती हूँ, और आप सुनते रहिए एफएम रेनबो।

हेलो वंस अगेन, मैं आ चुकी हूँ आपकी फरमाइश के गानों का लिस्ट और कुछ मैसेजेस जिसमें कुछ लोग खुश नहीं है क्योंकि उनकी फरमाइश के गाने अभी तक नहीं बजे हैं। तो वेट कीजिए, अभी तो हमारे पास वक्त है, शायद इस बार आपकी फरमाइश के गाने मैं बजा दूँ, है ना। तो कुछ कुछ लोगों के नाम मैं ले लेती हूँ ताकि उनको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि मैंने उनको नोटिस नहीं किया था। सो मुकेश कश्यप जी जो हैं वो नमस्कार बोल रहे हैं, उनके साथ शीतल, सोनू, राजपाल, पालका, जल, मानवी, लक्ष, मोहिनी, बलवीर। और उनका एक बहुत ही सिंपल रिक्वेस्ट था कि आप हमको किसी भी गीत में शामिल कर दीजिएगा। जी जी, थैंक यू मुकेश जी, हाउ स्वीट ऑफ यू। संजय जी का मैसेज है, आज रेनबो की ही आरजे सोनाली का बर्थडे है तो उनके लिए उन्होंने मैसेजेस किए हैं। सो आपकी तरफ से उनको मैं बर्थडे विशेज डेफिनेटली देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। हितेंद्र दास है, वो कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरा नाम किसी भी गाने के साथ ले लीजिएगा, वो आसाम से सुन रहे हैं। जी थैंक यू सो मच, मैं डेफिनेटली आपका नाम अभी ले रही हूँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, यवतमाल से रसिक जी है, वो बोल रहे हैं कि मैम तीन गाने के बाद बात होगी ना। जी जी बिल्कुल होगी, आपसे बातें करने के लिए तो मैं आती हूँ। अरविंद कुलकर्णी जी की मैसेज आया हुआ है, बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन शंकराचार्य जी का तेलंगाना से है, पंकज महोड़ जी, चेतन कुमार जी, महाराजा किरणपुरी गोस्वामी जी, फिरोज जी और बहुत सारे लोग। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि कुछ गाने मैं आपके लिए बजाती हूँ ताकि कि रिक्वेस्ट पूरी हो और मेरी बकबक से किसी की थोड़ा सा भी गाना कम ना हो जाए। तो जो मैं कोशिश करती हूँ कि तीन ही गाने बजाऊँ बैक टू बैक ताकि सबकी फरमाइश हो। मीना जी की फरमाइश है, उनको उन्होंने दो गाने रिक्वेस्ट किए थे जिसमें से मैं बजा रही हूँ, उनका जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा, जो रमैया वस्तावैया फिल्म का गाना है जो वो सुनना चाहती है। दूसरी फरमाइश है पंकज महोड़ जी की फरमाइश, तुझमें रब दिखता है, रब ने बना दी जोड़ी का गाना वो सुनना चाहते थे। और हीरामणि जी की फरमाइश थी तू ही मेरी शब है सुबह है। तो ये तीन जो गाने हैं अभी के लिए तो मैं प्ले कर रही हूँ वन बाय वन, बट आई होप कि और भी जो रिक्वेस्ट मैंने लिख रखी है आप सभी के गाने मैंने अपने पास भी लिख रखे हैं, लेकिन समय जितने गाने अलाउ करता है उतने गाने मैं बजाऊंगी आपके लिए। अभी सुनिए आप ये तीन खूबसूरत से गाने।

हेलो, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, मेरे यानी उर्वशी के साथ हम तुम चल रहा है और आप सभी की फरमाइश के गाने बजाने की पूरी कोशिश मैं कर रही हूँ। पर अभी से उन लोगों को आई एम रियली सॉरी जिनके गाने मैं जेन्यूनली कोशिश करके भी नहीं शामिल कर पाई, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि 45 मिनट्स 50 मिनट्स में जितने गाने मैं बजा सकूँ उतने गाने बजाने की कोशिश होती है, न्यूज़ होती है, आप सभी के नाम भी लेने होते हैं मुझे, तो कभी कभी कुछ गाने छूट जाते हैं। तो आई एम ट्राइंग कि मैं हो सके उतने बजाऊं, बाकी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो जिन जिन के गाने इस बार मैं नहीं

बजा पाई, उनके ही गाने बजाने की कोशिश मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी। लेकिन कुछ लोग जो हमारे साथ कब से जुड़े हुए हैं, जो मैसेजेस कर रहे हैं, उनके नाम तो डेफिनेटली लेने ही चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो जो हमारे साथ जुड़े हैं। एक है अतिंद्र जोशी जो हमारे साथ है, संजय पाटिल जी, आकांक्षा, मनोज सिन्हा अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दत्तात्रेय आदत वेलापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ धनंजय जी न्यू बॉम्बे से हैं। उनका बहुत स्वीट सा मैसेज है कि उन्होंने जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा गाना पहले बार बहुत बार फरमाइश में भेजा था, लेकिन आज किसी और की फरमाइश पे बजा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। थैंक यू सो मच। प्रदीप अनंत कृष्णन है, प्रमोद चिंचलोरकर है हमारे साथ विजेंद्र घटोला से जो हमारे रेगुलर लिसनर है, प्रणव शिंदे जी वो भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं जो हमेशा हमें सुनते हैं, मुकेश कश्यप जी, अरविंद कुलकर्णी जी, आपने केके का गाना कोई भी बजाइए ऐसा बोला था मुझे, और किसी और की फरमाइश तू ही मेरी शब है सुबह है थी, तो आपको आपकी पसंद का गाना केके का जो आप सुनना चाहते थे अरविंद जी, आपको वो गाना मिल गया होगा। आई होप आप खुश होंगे। अभी दो गाने मैं बजाने वाली हूँ, दो फरमाइश। एक है राजशेखर जी बड़ंगर से, उनकी फरमाइश का गाना है जॉगर्स पार्क फिल्म का बड़ी नाजुक है ये मंजिल, और दूसरा गाना जो मैं बजाने वाली हूँ राकेश माथुर जी का पसंद का गाना है नैना दा क्या कसूर। तो ये दोनों गाने बैक टू बैक मैं बजाऊंगी और उसके बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ।

हेलो। तो बस अब मेरे यानी उर्वशी के जाने का वक्त हो चला है और हम तुम भी इसी के साथ। और लास्ट फरमाइश जो मैं बजाने वाली हूँ, सुरेश कुमार जी ने कहा था तुम बिन फिल्म का गाना तुम बिन उनको सुनना है, तो उनके लिए अब जिन जिन लोगों की फरमाइश नहीं पूरी हो पाई है उन सभी

होम है, माफ़ी दे दीजिए मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगी, तो डेफिनेटली आपके पसंद के गाने बजाने की मैं कोशिश करूँगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। 8 बजे आप सुनेंगे रॉक विद चौक आपके साथ इंग्लिश गाने और इंग्लिश आरजे के साथ। तो बस चलते हैं, गुड नाइट।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
1: ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो चैनल ऑन 107.1 इट्स अ मंडे नाइट ऑन द 24th ऑफ ऑगस्ट 2026 जुलाई एंड ऑगस्ट द ओनली टाइम वेयर वी हैव टू मंथ्स बैक टू बैक विद 31 डेज इन द सेम ईयर आई मीन ऑफ कोर्स इट हैपेंस विद डिसेंबर एंड जैन एज वेल बट देन दे आर सेपरेट कैलेंडर ईयर्स सो व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट इट्स द 8th मंथ ऑफ 2026

0: लोला बाय द किंग्स।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
3: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
2: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
5: भारत को $70 trillion की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए

0: प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े तीन फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

श्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन कॉप 17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्रिस्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

102.6 पर आप सुन रहे हैं रंग महफिल जरी के संग। आंखें जो है ना, हमारे जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि हजारों दिलकश ख्वाबों, शायराना ख्यालों का एक कीमती खजाना भी है। शायरों ने महबूब की आंखों की तारीफ में जो कुछ लिखा और जितनी बड़ी तादाद में लिखा वो ना हैरान करने वाला है। वो कहते हैं कि साहब आंखें जो है ना बड़ी उस्ताद होती हैं, कमबख्त गुस्ताख होती है, खामोशी से वार करती है, इशारों से कमाल करती है, जुबान की जरूरत नहीं इसे, ये ना दूर से ही हलाल करती है। ये अगली गजल आप तक पहुंचा रही हूँ आशा जी और जगजीत साहब की आवाज में, उम्मीद है पसंद आएगी।

102.6 पर आप सुन रहे हैं रंगे महफिल। इस वक्त मैं आपके साथ जर्री। बेहद ही उम्दा गजल, ये बहुत ही लाजवाब। हर गजल ना अपने पीछे कुछ यादें और कुछ एहसास छोड़ जाती है। यही वजह है कि गजल का सफर कभी पुराना नहीं होता है। उम्दा, बेहतरीन और दिलकश इन गजलों में से एक और गजल आप तक लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ जगजीत साहब का यह अगला गजल आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM

0: म्यूजिक मस्ती। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 102.6 पर आप सुन रहे हैं रंग के महफिल जनी के संग। अगली गजल हरिहरन जी की आवाज में आप तक पहुंचा रही हूं।

मेरा क्या मानना है ना कि दर्द भी शायरी का बहुत अहम हिस्सा होता है। अपनों से मिलने वाले दर्द तो शायरों ने ताउम्र कलेजे से लगाए रखे कि जैसे कसम खा रखी है कि यहाँ तक कि कई तो इस दर्द का इलाज कराने तक को तैयार नहीं है, क्योंकि दर्द अगर हो तो शायरी बहुत उम्दा निकलती है दिल से। दर्द की कायनात इतनी फैली हुई है कि उर्दू शायरी अपनी इब्तदा से लेकर आज तक इसके बयान में मसरूफ है। दर्द शायरी की इसी बेदर्द दुनिया की सैर अक्सर हम करते हैं अपनी गजलों में। हरिहरन की आवाज़ में यह उम्दा गजल आप तक

102.6 पर आप सुन रहे रंगे महफिल, मैं हूं जर्री। अपनी मोहब्बत का इजहार करना आसान है, कोई बुरी बात नहीं है, ये कुछ बुरा भी नहीं है इसमें, पर मैं क्या मानती हूँ साहब कि मोहब्बत को बरकरार रखना मुश्किल है। थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि मौजूदा वक्त में बड़ी तादाद में लोग गमजदा रहते हैं सब कुछ होने के बावजूद। वैसे मैं ना मोहब्बत के मामलों की माहिर तो नहीं हूँ, पर हाँ अपने तजुर्बों से कुछ बेशकीमती इल्म ज़रूर हासिल किया है मैंने। आमतौर पर मोहब्बत का मतलब ये समझा जाता है कि एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाल के चलना, एक दूसरे में खो जाना, एक दूसरे के करीब रहना। लेकिन मेरा ना तजुर्बा ये कहता है कि ज़्यादा नज़दीकियाँ भी कभी कभी नुकसानदायक होती हैं। आप ना अपनी कदर खो देते हो। अगर आप अपनी मोहब्बत को टिकाऊ रखना चाहते हैं तो कभी कभार कुछ दूरियां ज़रूरी होती हैं। मोहब्बत का मतलब अपनी ख्वाहिशों को एक दूसरे पर थोपना हरगिज़ नहीं होता। खूब सारा मान देना, खूब सारा प्यार देना, और फिर देखिए मोहब्बत पूरे शबाब पर चढ़ती है। आवाज़ चंद अंदाज की आवाज़ में आप तक पहुंचा रही हूँ गज़ल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय

0: प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 11:49 स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक आप सुन रहे हैं रंगी महफिल जरी के संग। जब से उनसे मोहब्बत हो गई है ये फिजा नई नई सी हो गई है। उम्मीदों जुस्तजू से जुदा होकर आसान राह मंजिल हो गई है। दिल में खलिश है नजस में तपश यकीनन जिंदगी की शाम जमा हो गई है।

आंख जो उठाए तो मोहब्बत का गुमा हो, नजरों को झुकाए तो शिकायत सी लगे। दिन की भाग दौड़ और बेचैनियों को अगर रात का आसरा न होता तो जिंदगी ख्वाब देखने को भी तरस जाती। रात का अंधेरा और सन्नाटा जितना भी भयानक हो, शायरों ने इसे पूरी ईमानदारी के साथ हर रूप में देखा और दिखाया। लफ्ज जब शायरी में दाखिल होते हैं तो अपनी हदों को लांघते हुए कई दुनियाओं की सैर कराते हैं और तसव्वुरात हमें दिखाते हैं। इस वादे के साथ जा रही हूँ कि अगली दफ़ा किसी खूबसूरत मोड़ पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शब खैर।

बहुत ही खूबसूरत शो के साथ जरीन जी आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी रेनबो एफएम 102.6 102.6 पर हमारे साथ। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेचिंग पहुंच गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टोक्यो में कहा, भारत विनिर्माण कार्यों को लेकर कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए 2 महीने में नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम लागू करेगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगामी त्योहारों और रक्षाबंधन को देखते हुए प्रवर्तन और निरीक्षण की कार्रवाई तेज की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान भारत ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतकों की बदौलत श्रीलंका के खिलाफ पहली बारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित करने में सफल रहा। ये थे मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। कुछ ही देर में हाजिर हम लेकर प्रोग्राम जीरो आवर शो। जिस तरह से कैलेंडर ने अपना दिन बदला है, घड़ियां भी अब 0002 दिखा रही हैं, यानी अब जीरो आवर्स के लिए हम तैयार हैं। आप भी तैयार रहें और सुनेंगे खूबसूरत गाने मेरे यानी रजत के साथ इसी फ्रीक्वेंसी पर, इसी चैनल पर। इसके अलावा हम उपलब्ध हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी, तो आप अगर ये ऐप से अभी भी महरूम हैं तो ज़रूर इसे डाउनलोड कर लें, देश और दुनिया के हर हिस्से हर कोने से हमारे साथ जुड़ने के लिए।

0: शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

एफएम रेनबो इंडिया पर प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मास्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारतीय चीन सीमा वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टोक्यो में कहा, भारत विनिर्माण कार्यों को लेकर कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए 2 महीने में नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम लागू करेगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिक संशोधन अधिनियम CAA के तहत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई उड़ानें प्रभावित हुईं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी आज तेज बारिश की संभावना। और कोलकाता क्रिकेट टेस्ट में मेजबान ध्रुव जुरेल और देवदत्त पिडिक्कल के शतकों के बदौलत भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। ये थे अभी तक के एफएम रेनबो इंडिया मुख्य समाचार।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: FM रेनबो इंडिया पर प्रसारित है कार्यक्रम सुहानी रात और आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत स्पेशल 26 के गीत के साथ। उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को बेहद बेहद पसंद करेंगे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। अब इससे पहले कि आप जुड़े भुलाए ना बने से लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर गहन चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा

सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2006 का उद्घाटन किया। सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टोक्यो में कहा, भारत विनिर्माण कार्यों को लेकर कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए 2 महीने में नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम लागू करेगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने पर इस दौरान चर्चा की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान ध्रुव जुरेल और देवदत्त पाडिक्कल के शतकों के बदौलत भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। थोड़ी देर में आप जुड़ेंगे हमारे नियमित कार्यक्रम भुलाना बने से मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा हम उपलब्ध हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। आप सभी का स्वागत, सभी का बहुत बहुत अभिवादन।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

एफएम रेनबो इंडिया पर प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मास्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया और सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल

नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई उड़ानें प्रभावित हुईं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की संभावना। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान ध्रुव जुरेल और देवदत्त पिडिक्कल के शतकों के बदौलत भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। ये थे अभी तक के FM रेनबो इंडिया मुख्य समाचार।

आकाशवाणी। श्रोताओं, मिडनाइट मेलोडी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन।

सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

सुबह के 4 बज चुके हैं और श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। इससे पहले कि हम पहुंचे सारे गामा की मधुर तरंगों के पास, धुनों के पास, लेते हैं एक जानकारी अब तक के मुख्य समाचारों की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज सम्मेलन में ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए बीजिंग पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर इस दौरान चर्चा हुई। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने पर भी इस दौरान गहन चर्चा हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतकों के बदौलत भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। जुड़े आप हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर और अब प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है सारेगामा मेरे यानी रजत के साथ। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है।

बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।